काफी मेहनत की और दूसरों के साथ काम किया, लेकिन धीरे धीरे अनुभव और हिम्मत बढ़ती गई और आज मेरा खुद का काम है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है उस समय लिया गया फैसला सही था। जी, कभी कभी लगता है कि उस समय हिम्मत नहीं पड़ती कुछ चीजों को करने से, लेकिन जब आप आगे देखते हैं तो उसके रिजल्ट अगर अच्छे होते हैं तब आपको एहसास होता है कि जो हमने वो निर्णय लिया था वो सही था। फिलहाल आगे लिखते हैं, मैम पिछले प्रोग्राम में आपने गुलगुले की रेसिपी बताई थी तो सुनकर अपने नागौर की याद आ गई। क्या बात है, लिखा है हमारे नागौर जिले में मकर संक्रांति के दिन लगभग हर घर में गुलगुले बनाए जाते हैं, यानी आपकी बताई रेसिपी ने सीधे राजस्थान की रसोई और बचपन की यादों तक पहुंचा दिया। अरे वाह, क्या बात है, और आपकी बातें गीत आवाज तीनों मिलकर होठों पर तेरी बात को खास बना देते। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। और आपने क्योंकि कहा कि नागौर की याद आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और गुलगुले राजस्थान में बनते मकर संक्रांति में, देखिए ये बात भी आपने स्पेशल हमें बताई। और ये नेक्स्ट मेल है पिंकू सोनी का, टिकैत नगर बाराबंकी से, सादर प्रणाम लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम। और लिखा है आगे कि मेल कर रहा हूँ बाराबंकी से, और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ट्रेन से जा रहा था और रात में जब मैं सो रहा था तभी मेरे जेब से पूरे पैसे निकल गए। तो जी लोग नीचे लेते थे वो लेटे थे वो उतर कर हमारे पैसे देने।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 9 तारीख व दिन है बुधवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सुमो, मनपम में उद्घोषक श्री थुतन टाशी, तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको और हेमंत स्वर्गियारी, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री

मोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी चुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार और 2:15 पर, दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: distribute the prizes to the prize-winning students and Vidyalayas for their meritorious performance in the competition. The Ministry of Parliamentary Affairs has been organizing youth parliament competitions in Jawahar Navodaya Vidyalayas for the past 30 years. Benchmark domestic equity indices paired losses from the day's lows but remained in the red during the afternoon session today. The Sensex declined 437 points to 75,140, while the Nifty lost 89 points to 23,547 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices fell 0.3% each a short while ago. Brent crude prices breached the $100 per barrel mark in intraday trade, reaching their highest level in 7 weeks and continuing to trade near those elevated levels. The Ministry of Labour and Employment, in collaboration with the Maharashtra government, will organise a national conference on building and other construction workers, BOCW, in Mumbai on the 11th and 12th of this month. The conference will be chaired by Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandviya. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anuradha Kumaradesanaike in Colombo. Both leaders reaffirm to work for security, peace and prosperity of the region. Final breaks, finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारदेसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारदेसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1000

0: अब 400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफल

0: और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
0: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़

0: हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे जगजीत सिंह की आवाज में हिंदी भक्ति गीत। गीत को संगीत से संवारा है स्वयं जगजीत सिंह ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पापोन की आवाज में चंद असमिया गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पप्पू की आवाज में चंद असमिया गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवंग की 9वीं कक्षा की छात्रा पेमा छुक्की से डिजिटल विचलन और स्क्रीन टाइम कैसे कम करें विषय पर चंद शब्द।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ पेमा छुक्की नामो पीएम श्री जे एन वी तवंग 9वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और स्क्रीन टाइम कम कैसे करें, यह विषय हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। साथियों, स्क्रीन पर नहीं सपनों पर ध्यान दो, मोबाइल नहीं अपने मन की पहचान करो, डिजिटल बनो पर इतना भी नहीं कि असली दुनिया भी खो जाए कहीं। आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है। हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जब यही तकनीक हमारे समय, ध्यान और स्वास्थ्य को चुराने लगे तब यह सुविधा नहीं बल्कि समस्या बन जाती है। यही समस्या है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है जब हम पढ़ाई, काम या अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रील्स या गेम्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम इंसानों ने बुरी आदत बना ली है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले भी मोबाइल चलाना। हमें इन बुरी आदतों को बदलना चाहिए क्योंकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कई गंभीर दुष्परिणाम है, जैसे पढ़ाई में एकाग्रता की कमी, आंखों में जलन और दर्द, सिर दर्द, रात को सही से नींद नहीं आना, याददाश्त कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन और तनाव, परिवार से बातचीत कम हो जाती है, शारीरिक गतिविधि की कमी। मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ कभी कभी बस 5 मिनट के लिए फोन चलाती हूँ, देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। मोबाइल देखने के कारण समय की बहुत बर्बादी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें डिजिटल दुनिया से दूर भाग जाना चाहिए? नहीं, हमें डिजिटल साधनों का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। अब आइए जानते हैं स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। पहला उपाय, समय की सीमा तय करें। अपने मोबाइल और स्क्रीन के लिए रोज एक निश्चित समय तय करें। आजकल मोबाइल में स्क्रीन टाइम ट्रैकर होता है, उसका सही उपयोग करें। दूसरा उपाय, नोटिफिकेशंस को नियंत्रित करें। हर ऐप का नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद करें ताकि ध्यान भंग ना हो। तीसरा उपाय, मोबाइल फ्री समय बनाइए। पढ़ाई के समय, खाने के समय और सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी बनाइए। चौथा उपाय, ऑफलाइन गतिविधियों को अपनाइए। खेल

0: उद्योग, किताबें पढ़ना, संगीत, चित्रकला और परिवार के साथ समय बिताना, ये सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा इलाज है। पांचवा उपाय, उद्देश्यपूर्ण उपयोग करें। खुद से पूछे, मैं मोबाइल क्यों उठा रहा हूँ? अगर उत्तर है बिना वजह, तो मोबाइल नीचे रख दीजिए। अगर हम इन उपायों का उपयोग अपनी जिंदगी में करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। साथियों, याद रखिए, जब स्क्रीन से दूरी बढ़ेगी तब जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। मोबाइल हमारा गुलाम होना चाहिए, हम मोबाइल के गुलाम नहीं। आज के छात्र ही कल का भविष्य है। अगर हमारा ध्यान स्क्रीन पर ही अटका रहेगा तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, डिजिटल तकनीक एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन संयम और संतुलन के बिना यह शक्ति कमजोरी बन सकती है। मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक है। अगर हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो स्वस्थ और खुश रहेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, स्क्रीन को नहीं लक्ष्य को देखें, रील्स नहीं रियल लाइफ जिए, मोबाइल से नहीं मन से जुड़े। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की नौवीं कक्षा की छात्रा पेमा चुकी नामो से डिजिटल विचलन और स्क्रीन टाइम कैसे कम करें विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे के की आवाज में फिल्म ओम शांति ओम से। शब्द रचना है विशाल ददलानी की व संगीत है विशाल शेखर का।

0: फिल्म आई हेट लव स्टोरी के संगीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
1: आपकी चाय।
2: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
1: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म महाराज से। शब्द रचना है कौसर मुनीर की, वह संगीत है सोहेल सेन का।

अभी आपने सुना फिल्म स्त्री टू से गीत। वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाज में गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत था सचिन जिगर का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे गुलजार द्वारा शब्द फिल्म सुरमा से। दिलजीत दोसांझ की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान और लॉय ने।

0: Rena, anko, anko, mehi, Rena, anko, anko, mehi, Rena.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में फिल्म क्या यही प्यार है से। शब्द रचना है जलीस राशिद के, वसंगीत है साजिद वाजिद का।

अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में से ये गीत विशाल मिश्रा और जारा एस खान की आवाज में गीतकार थे कुमार व संगीत था तनिष्क बागची का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे समीर द्वारा शब्द फिल्म फिदा से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना फिल्म बागी 4 से गीत जोश बरार और परंपरा टंडन की आवाज में गीत कार्तिक कुमार, जगदीप वारिंग और जोश बरार, संगीत था आगाज का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे राजशेखर द्वारा शब्द फिल्म सैयारा से। विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल मिश्रा ने।

0: फिल्म सैयारा कैसे गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 rupees, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
0: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट से वीणा वादन। राग है देश और तबले पर संगतीय है संदीप दास ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक के साथ की बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित करेंगे। भारत ने सऊदी अरब के इलाके पर हुती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन कल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत समृद्धि और प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, साथ ही यह देश की सीमाओं की सुरक्षा के में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों की सुरक्षा अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा सीमाओं की सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने विधायी कामकाज में बातचीत, बहस और चर्चा के महत्व पर जोर दिया। अपनी इस बात को दोहराते हुए कहा कि बहस, चर्चा या हंगामे का नतीजा हमेशा किसी फैसले के रूप में निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बहस लोकतंत्र को मजबूत करती है और रचनात्मक सहयोग से राज्य और देश आगे बढ़ते हैं। सदन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश की शानदार वन संरक्षण और समृद्ध प्राकृतिक विरासत की भी तारीफ की। उन्होंने राज्य में कीवी के बढ़ते उत्पादन की भी सराहना की और इसकी गुणवत्ता तथा निर्यात के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की क्षमता का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां राज्य विधानसभा के विकास और उसकी विधायी यात्रा को दिखाया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक के साथ बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात को दोहराया कि सभ्यता के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े होने, करीबी पड़ोसी और समुद्री साझेदार होने के नाते भारत और श्रीलंका दोनों देशों के विकास और वहां के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह

कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 30 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत इस श्रृंखला में 27वीं प्रतियोगिता 2025-26 के दौरान पूरे भारत में नवोदय विद्यालय समिति के 8 क्षेत्रों के 100 विद्यालयों में आयोजित की गई थी। भारत के सऊदी अरब के इलाके पर हूती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। खासकर आम नागरिकों और आर्थिक सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की सऊदी अरब में हुए हमलों के बारे में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले जो क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं और बार अल मंदेब में आवाजाही के आजादी के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रेरणाता भरतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भरतेंदु हरिश्चंद्र ने भाव, भाषा और शैली में नवीनता का समावेश कर हिंदी को आधुनिक स्वरूप दिया। उनकी रचनाओं में ईश्वर की भक्ति के साथ समाज सुधार की चेतना, स्त्री शिक्षा का समर्थन और स्वाधीनता की प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मानते थे कि किसी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और संस्कृति से होती है, इसलिए वे मातृभाषा को केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान और चेतना का आधार मानते थे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के एक साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए थे। प्रिंस रहीम आगा खान कल उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। प्रिंस रहीम नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान प्रिंस रहीम आगा खान अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद भी जाएंगे। प्रिंस रहीम आगा खान पंचम की यह भारत की पहली यात्रा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन कल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज़ है। प्रस्तुत है भारत के उपराष्ट्रपति के ईटानगर दौरे पर एक रेडियो रिपोर्ट। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन बीते कल यानी 8 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे, जहां लोक भवन ईटानगर में उनका स्वागत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। आज यानी 9 सितंबर 2026 को उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में सम्मिलित हुए। आज के इस विशेष सत्र में राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के सभी सदस्यों के अलावा कुछ स्कूली बच्चे भी उपस्थित हुए। इस शुभ अवसर पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री तेसम पोंगते ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, साथ ही राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्यों सहित सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में उपराष्ट्रपति को बताया कि इन 5 दशकों में अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ अपने सांस्कृतिक विरासतों को भी आगे बढ़ाया है और इस सुंदर प्रगति का श्रेय उन्होंने पूर्व एवं वर्तमान के विधानसभा सदस्यों को दिया।
1: सर, लास्ट ईयर वी कमेमोरेटेड 50 इयर्स ऑफ आवर लेजिस्लेटिव जर्नी इन अ बिफिटिंग मैनर। दिस ग्लोरियस लेजिस्लेटिव जर्नी स्टैंड एज अ टेस्टमेंट टू द सक्सेसफुल पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टेट व्हाइल अपहोल्डिंग द स्पिरिट एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। ओवर दिस 5 decades, आवर स्टेट हैज नॉट only embraced modernity and progress, but has also succeeded to preserving its rich culture, tribal culture, tradition and heritage. The harmonious balance between development and cultured identity is one of the defining achievements of our democracy journey. This remarkable accomplishment is a reflection of the wisdom, dedication and commitment of our former and present members, whose collectively contribution had strengthened our legislative institution and enriched the democratic fabric of state.
0: विधानसभा अध्यक्ष ने सदन एवं लोकतंत्र के विषय में युवाओं में जागरूकता लाने के प्रति किए जाने वाले कुछ कार्यक्रम

0: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं? सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी देखा है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानियां।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोका। कार्यक्रम जरोका में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोका में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे आज तवंग मठ में आयोजित पूजा में पूजनीय प्रोफेसर समनोंग रिमछे द्वारा दिए गए शिक्षा का अंश। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित करेंगी दर्जी ड्रामा। शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज। शाम 7:55 पर देशभक्ति

गीतों का कार्यक्रम क्वामे तराने, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म उपकार से महेंद्र कपूर की आवाज में एक देशभक्त गीत। आज रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आप सुन सकेंगे ईटानगर स्थित राज्य विधानसभा में आयोजित 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन का विधानसभा समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, और रात्रि 9 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 10 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे देवाशीष दास गुप्ता की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक गीत। कल दोपहर 3:30 पर आप सुन सकेंगे हमारा मासिक कार्यक्रम महिला मंच। दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म रॉय सरजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में गीत, फिल्म कपूर एंड सन्स से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में गीत, फिल्म तमाशा से मोहित चौहान की आवाज में गीत, फिल्म सनम रे से अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमाल मलिक की आवाज में गीत, फिल्म हॉलीडे से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म अजय प्रेम की गजब कहानी से आतिफ असलम की आवाज में गीत, फिल्म नोटबुक से विशाल मिश्रा की आवाज में गीत, फिल्म जुग जुग जियो से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाज में गीत, और फिल्म बूथ वन से अखिल सचदेवा और मर्शील गुजराल की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग, जिसमें आप सुन सकेंगे उस्ताद गुलाम अली खान से ख्याल। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री थुतन टाशी से। 5:35 पर आप सुन सकेंगे तवंग मठ में आयोजित पूजनीय प्रोफेसर समदोंग रिम्पचे से नैतिक शिक्षा का शेष भाग, और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे लामा मेतो टाशी, लामा रिंजिन सवंग, अनिलोपसंग सियांग और अनिलोपसंग छेतोन से बौद्ध भक्ति की। कल शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7 बजे आकाश कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम की 5वीं कक्षा की छात्रा डुंडू बंगमुदोमगे से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा आइसक्रीम मैन। कल शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत शान और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म थ्री इडियट्स से शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज में गीत, फिल्म कोई मिल गया से शान, कविता कृष्णमूर्ति और बीबी स्नेहा की आवाज में गीत, फिल्म पीके से शान और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत, फिल्म हम तुम से शान और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म गोलमाल 3 से शान और अनुष्का मनचंदा की आवाज में गीत, फिल्म
हे बेबी, सिशान, सुनू निगम और शंकर महादेवन की आवाज़।

Postmodern civilization theory.

Yuba Yinamas Najin Pichala, Gumio Mijava Nashi, Lai Semanda.

0: Priya, Dajik, Detergit, Noonup, Shedu Lerma, Sanasa, Langina Udepka, Agashone, the Wank, Dishnup Dick, Munbak Lerimbana, Chazan Dudur, Uts Agashone, the Wangimbur, Langisama, Nubdux is in the Sondur, Da Ujuji, Agashone, the Liquor. Relationship, the Hindu singer, Ejik Juji, Susan Niskun Kamilamaji, Injiga singer, San Nasa
1: Sotaragi Pamba Chile, Nanga Muji, Nivacha
2: Namaskar Akashwani Samachar Kesat, Me Sir Firozi. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की तीन मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
3: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 2 और लोगों को जबरन

0: associated with Pakistan's Inter-Services Intelligence, ISI, and Counter-Terrorism Department, CTD, were involved in his disappearance. India ended the campaign at Stage 3 of the World Archery Para-Series in Ahmedabad on a high note, winning 2 gold and 4 bronze medals on the final day today. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, और इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रहे हैं सिटिम यांगचिन।

0: दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई न कोई अपना एक पहचान होता है, लेकिन वह अक्सर इसे दूसरों जैसे बनने में खुद को नष्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारे जिंदगी की अनमोल वक्त भी ढलती है। आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनने वाले आवाज की दुनिया के तमाम दोस्तों को सिटी म्याजिन का नमस्कार। दोस्तों, हमारे आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ तकनीकी सहयोगी है हेमंता सोरगरी, अमल कुमार दास और तानिंग ताको। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं हमें ये पहला फोन किस श्रोता ने और कहां से किया है। हेलो, नमस्कार।
1: Lesla,
0: Tichina Pimtisla, Nakhtan Osamu Pritishla, San Nasi Jigla.

0: हेलो नमस्कार.
1: ओ नमस्कार समझी जीरो
0: लस लस संभवित ला जी संभव को सुन ला
1: मंत्र समझिए बम जमने में कितने ब्रिंग होते ना सिया
0: लस ला एनो सुन ना दिन ला
1: ने धर्त ने डाला
0: नर्बुला ताते कच्ची शिव नवीन ला
1: ने प्राप्त है ने उला
0: अलस लस इच्छा को उत्सम सन गंता पुना सुसनी ला
1: पुना नुरो ने आप ब्रोक पति ने दर्जी ने की किसे ताऊ प्राप्त है ए पेन चम ने की ने वो तो ब्रो सेना ने में चीज नक्शा ने की ने जो मोटो का मेजर चीन दर्जी ने की ने इच्छा करने का अंशन चम ने की ने ओम दिन दिन ला
0: लस ला नर्बुला ने इनाक्तुक दे नवसा मुचित पुतिशिला सन्ना सिंह जीगला
1: आठ जीश
0: लस ला ते चिनंग

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार
1: हेलो नमस्ते।
0: जी। नमस्ते
1: मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनारी असम से बात कर रहा हूँ, भाईकन मुंडा।
0: जी, भाईकन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनाऊं?
1: फिल्म का नाम है कल की आवाज़, ना है आज रात चांदनी है।
0: जी, जरूर सुनवाएंगे इस गीत को। और बताइए, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और कौन कौन होंगे?
1: मेरे दोस्त है अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, अरुण पात्र, लक्ष्मी पात्र, जोगिंद्र रंगपी, सुनीता बसुमतारी, अंजलि बसुमतारी, शरद द्वारा और जितने भी अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी श्रोताओं के लिए गाना डेडिकेट।
0: जी बिल्कुल। और आपके वहाँ पे जो मौसम है वो किस प्रकार से? अभी तो मौसम साफ होंगे ना?
1: हाँ, अभी तो मौसम अच्छा है और इतना बारिश भी नहीं है, इतना गर्मी भी नहीं है, अच्छा है।
0: जी, चलिए ठीक है। तो आप सब अपने ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें इस मोबाइल नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 6033914908। इसी जानकारी के साथ ही अब आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए तकनीकी सहयोगी हेमंता सोरगरी, अमल कुमार दास और तानिंग ताको के साथ अपने दोस्त सिटी म्याचिन को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, और इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रही थी सिटिम यांगचिन। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, और 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मीनाक्षी मजुमदार। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। साथ ही यह देश की सीमाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों की सुरक्षा अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा सीमाओं की सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने विधायी कामकाजी में बातचीत, बहस और चर्चा के महत्व पर जोर दिया। अपनी इस बात को दोहराते हुए कहा, बहस, चर्चा या हंगामे का नतीजा हमेशा किसी फैसले के रूप में निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बहस लोकतंत्र को मजबूत करती है और रचनात्मक सहयोग से राज्य और देश आगे बढ़ते हैं। सदन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश की शानदार वन संरक्षण और समृद्ध प्राकृतिक विरासत की भी तारीफ की। उन्होंने राज्य में कीवी के बढ़ते उत्पादन की भी सराहना की और इसकी गुणवत्ता तथा निर्यात के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की क्षमता का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां राज्य विधानसभा के विकास और उसकी विधायी यात्रा को दिखाया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज ईटानगर में नेदर नामलो का दौरा किया। यह प्रदेश के निशी समुदाय और अन्य मूल निवासी समूहों की दोनी पोलो आस्था से जुड़ा एक पवित्र पूजा स्थल और सामुदायिक केंद्र है। उपराष्ट्रपति ने प्रार्थना कक्ष में पूजा अर्चना की और उन्हें निशी समुदाय की मूल आस्था, विश्वासों और प्रार्थना के तरीकों, मूल निवासी गुरुकुल प्रणाली, पारंपरिक ज्ञान और औषधि पद्धतियों के संरक्षण तथा मातृभाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। युवाओं से अपनी मातृभाषा और परंपराओं से जुड़े रहते हुए आधुनिक विज्ञान, तकनीक और वैश्विक कौशल को अपनाने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अपनी आकांक्षाओं में आधुनिक होना चाहिए, लेकिन अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्य से गहराई से जुड़ा रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय इलाके के वाचा में इस महीने की 6 तारीख को और कलचीनी इलाके में दमाई में पहली सीनियर मिलिट्री कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई। कल दोपहर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वेस्टर्न सेक्टर में भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है। राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर कल शी योमी जिले के मेचुका से डिब्रूगढ़ के मोहनबारी तक 2 गंभीर रूप से घायल मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए मेचुका की सर्कल ऑफिसर श्रीमती रितु तावे ने अनुरोध पर यह आपातकालीन निकासी अभियान शुरू किया गया था। इस बीच नागरिक उड्डयन विभाग इस ऑपरेशन में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंसियों की कोशिशों की दल से सराहना करता है। मरीजों को सुरक्षित और समय पर बाहर निकालने में भारतीय वायुसेना की त्वरित कार्रवाई और बहुमूल्य सहयोग के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया है। राज्य शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और पेना तोता रोड प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में श्री सोना ने इस बात पर जोर दिया है कि यह सड़क इस इलाके के लिए कनेक्टिविटी का एक अहम जरिया है और इसे समय पर पूरा करना प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित लोगों से कहा है कि वे आपस में अच्छा तालमेल बनाए रखें, काम की क्वालिटी का ध्यान रखें और तय समय सीमा का पालन करें, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। कल तेजू में अंतर्राष्ट्रीय साक्षर

0: election process to ensure an accurate and credible electoral roll. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित रीजनल न्यूज. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. श्रोताओं आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत फिल्म उपकार से. महेंद्र कपूर की आवाज में इस गीत को शब्दबद्ध किया है गुलशन बावरा ने व संगीत है कल्याण जी आनंद जी का.

0: फिल्म उपकार के इसी गीत के साथ कार्यक्रम को अमित तारा ने यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स OTT ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म पराया दिन से किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी के, वो संगीत है RD बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है जलालाबाद वैस्या वह सूरज, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा, और असम से आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे एक फूल दो माली से आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना है प्रेम धवन का व संगीत है रवि का। इस गीत की हमें फरमाइश की है तोरोवल नवन शहर पंजाब से आप है गगनदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रेम ठंडी, बेबी वमिका और वानी ठंडी।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म उत्सव से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना है वसंत देव के, वसंगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है गांधी चौक बारमेर राजस्थान से आप है बावलेश पनवर, दैनी पनवर और मनीष पनवर। रामदेवरा से आप है दिनेश चौहान और खलीफों की बावड़ी से आप है खुदाबख्श खलीफा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म आन मिलो सजना से आशा भोसले की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है नालेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र से आप है पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर, और मलकापुर से आप है नारायण इंगले, सोपन तायरे और आशीष मुरेकर।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म गीत गाता चल से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज में। गीत को शब्द व संगीत दिया है रविन्द्र जैन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है रग्नी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

श्रोताओं, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे ईटानगर स्थित राज्य विधानसभा में आयोजित 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की विधानसभा समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 7वें विशेष सत्र 2026 के दूसरे एवं अंतिम दिन की बैठक पर आधारित ये खास पेशकश। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आज की बैठक की शुरुआत होने पर विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मेन, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में एक ऐतिहासिक पल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति रही। उपराष्ट्रपति ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने विधायकों से लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखते हुए और देश के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। विधानसभा परिसर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपराष्ट्रपति को वहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने अरुणाचल

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन की उपस्थिति रही। उपराष्ट्रपति ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने विधायकों से लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखते हुए और देश के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। विधानसभा परिसर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपराष्ट्रपति को वहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां राज्य विधानसभा के विकास विस्तार और उसकी विधायी यात्रा को प्रदर्शित किया गया। अपने संबोधन में श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों की सुरक्षा भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा सीमाओं की सुरक्षा से निकटता से जुड़ी हुई है। भारत की विविधता में एकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि देश की संविधान राष्ट्र प्रथम की सोच और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से एकजुट है। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत की विविध भाषाओं और परंपराओं के पीछे विचारों की एकता निहित है। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए श्री राधाकृष्णन ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और विधायकों से इस विरासत के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर के विकास पर बढ़ते ध्यान का भी उल्लेख किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए डोनर मंत्रालय की स्थापना तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र को दिए जा रहे महत्व का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश सरकार और जनता को राज्य की विकास उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश में कीवी का प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा है। राज्य में सड़क संपर्क का विस्तार हुआ है, 1,00,000 से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं तथा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विधानसभा के स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा होने पर श्री राधाकृष्णन ने राज्य विधानमंडल को बधाई दी है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को प्लास्टिक मुक्त बनाने और विधानसभा पुस्तकालय तथा संग्रहालय की स्थापना जैसे पहलों की सराहना भी की। विधायकों से चुनावी सफलता से परे जनसेवा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि चुनाव वोट के जरिए जीते जा सकते हैं, लेकिन जनता का सम्मान और विश्वास केवल समर्पित सेवा से ही अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने सदस्यों से जननीति और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल का पूरा उपयोग करने का आह्वान किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विधायी कार्यवाही में संवाद, बहस और चर्चा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया है कि बहस, चर्चा या यहाँ तक कि व्यवधान भी अंततः किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ बहस लोकतंत्र को मजबूत करती है, जबकि रचनात्मक सहयोग राज्य और देश की प्रगति को आगे बढ़ाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि विकसित अरुणाचल प्रदेश के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि विकास समावेशी होना चाहिए और किसी भी जनजाति या वंचित समुदाय को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि लोगों के आर्थिक विकास और कल्याण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि इसका उचित और जिम्मेदार उपयोग राज्य के लिए अधिक राजस्व पैदा करने के साथ विकास की गति को भी तेज कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत की एकता का अभिन्न हिस्सा है और राज्य देश की सीमाओं का एक गर्वित प्रहरी होने के साथ साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और असीम संभावनाओं के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को लगातार प्राथमिकता दी गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी के रूप में वर्णित करना इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में डोनर मंत्रालय ने 6,800 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। अरुणाचल प्रदेश की विकास उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य का लगभग 79% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है और यहाँ समृद्ध जैव विविधता, जंगल, नदियाँ तथा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संसाधन मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये संसाधन देश की पर्यावरणीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सदन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने कहा कि आज का दिन इस सदन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है। माननीय उपराष्ट्रपति का हार्दिक आभार करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करते हुए सदन को संबोधित करने की सहमति दी है। साथ ही उनके ज्ञानवर्धक विचारों और बहुमूल्य मार्गदर्शन से विधानसभा के सभी प्रतिनिधि लाभान्वित होंगे। उपराष्ट्रपति को राज्य से परिचित कराते हुए श्री पोंगते ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश एक सुंदर और विशिष्ट राज्य है जो भव्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। यह अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों, नदी घाटियों और सुरमई पठारी क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक संपदा के साथ राज्य की समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत से भी संपन्न है, जो यहाँ निवास करने वाले विभिन्न स्वदेशी जनजातीय समुदायों की विविधता

में दिखाई देती है। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज और जीवंत त्योहार है। यही विविधता और आपसी सद्भाव अरुणाचल प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। श्री पोंके ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की नींव नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफाब पंचायत राज विनियमन अधिनियम 1967 से लागू होने के साथ मजबूत हुई। यह एक ऐतिहासिक विधायी कदम था जिसके माध्यम से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल थे। इसके बाद 29 दिसंबर 1969 को एजेंसी काउंसिल का गठन किया गया, जो एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती थी और जिसके अध्यक्ष असम के राज्यपाल हुआ करते थे। यह महत्वपूर्ण संवैधानिक और विधायी पहल अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई और इन्होंने लोकतंत्र की भावना तथा उनके मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और लोगों की आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से पिछले कुछ दशकों में अरुणाचल प्रदेश में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्ष 2014 के बाद से राज्य को कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, कौशल विकास और हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष ध्यान और पर्याप्त निवेश मिला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्ष अरुणाचल प्रदेश में परिवर्तनकारी विकास और जन केंद्रित शासन के दशक रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कनेक्टिविटी को इस बदलाव की रीढ़ कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूरदराज माना जाने वाला अरुणाचल प्रदेश आज बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से देश की विकास यात्रा में तेजी से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि ईटानगर में दोन्यु पोलो हवाई अड्डे का संचालन शुरू होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने व्यापार, पर्यटन, निवेश और लोगों के बीच संपर्क के नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, रणनीतिक सीमावर्ती सड़कों, रेल संपर्क और इंटरनेट बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार से नागरिकों की पहुंच और आर्थिक अवसरों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शासन व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है कि शासन लोगों तक आसानी से पहुंचे, जवाबदेह और पारदर्शी हो तथा जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव दिखाई दे। उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्रिमंडल के नेतृत्व की शुरू की गई सरकार आपके द्वार, सेवा आपके द्वार और कैबिनेट आपके द्वार जैसे पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाएं सीधे पहुंचाई है। इन पहलों से जनता का विश्वास मजबूत हुआ है और सेवा वितरण में सुधार आया है। साथ ही ये सिद्धांत मजबूत हुआ है कि शासन व्यवस्था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का विकास महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से भी गति प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता, उद्यमी, शिक्षिका, स्वास्थ्यकर्मी, निर्वाचित प्रतिनिधि और सामाजिक बदलाव की वाहक के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आजीविका, स्वयं सहायता समूहों, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से महिलाएं राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उनकी बढ़ती भागीदारी राज्य के विकास को और समृद्धि की ओर ले जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र सुरक्षा में महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। इस संदर्भ में राज्यपाल ने केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सराहना भी की। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संबोधन में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का अरुणाचल प्रदेश की पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए कहा है कि इस विशेष सत्र में उनकी उपस्थिति राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के 4 दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक सेवा, शासन तथा संवैधानिक दायित्व के लंबे अनुभव से देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश साधारण प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। उन्होंने कहा है कि राज्य की विभिन्न जनजातियाँ अपनी अलग अलग परंपराओं, भाषाओं और रीति रिवाजों के बावजूद पीढ़ियों से आपसी सद्भाव और सम्मान के साथ रहती आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे दूरदराज के गाँव में रहने वाले अरुणाचल प्रदेश के लोग देश की सीमाओं की गौरवशाली प्रहरी है। उनकी उपस्थिति, दृढ़ता और देशभक्ति राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दशकों तक भौगोलिक स्थिति को अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता रहा, लेकिन आज राज्य इसी भौगोलिक स्थिति को अवसर में बदल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल की लगातार यात्राओं ने राज्य के प्रति केंद्र सरकार के महत्व को दर्शाया है, जबकि केंद्रीय मंत्रियों की नियमित यात्राओं से केंद्र और पूर्वोत्तर की जनता के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले एक दशक में अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 149%

0: बढ़कर करीब 20,373 करोड़ रुपए से 50,651 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राज्य का बजट भी 238% से अधिक बढ़ा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य की अपने संसाधनों में 5.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सड़क निर्माण की गति लगभग 6 गुना बढ़कर 300 किलोमीटर प्रतिवर्ष से लगभग 1,800 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गई है। ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क 4,131 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 14,000 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों, सुरंगों, रेलवे, हवाई संपर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार से दूरियां कम हो रही है और लोगों के लिए नए सामाजिक एवं आर्थिक अवसर खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे, सेला टनल, दोनी पोलो एयरपोर्ट, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और फ्रंटियर हाईवे जैसी परियोजनाओं को केवल बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन बताए हैं। उन्होंने इन विकास कार्यों और राज्य पर निरंतर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार के प्रति अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। इस बीच 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 7वें विशेष सत्र 2026 में कल 3 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा स्थापना एवं संचालन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं संशोधन विधेयक 2026 और अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक 2026 शामिल है। इस सफर में अभी के लिए इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर को। नमस्कार।
1: टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने।
2: और कप्तान, क्या माइंड पे रहा होगा और क्या, जैसा कि आपने कहा कि अंतिम दिन आप अगर ड्रॉ भी कराते हैं तो मौका आपके पास होगा, वो सोच थी?
3: बिल्कुल शक्ति, और ईशान किशन बहुत ही अपने डिसीजन को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। तिलक वर्मा जिन्होंने 99 रन बनाए लेकिन टीम को 336 रन पर ही जो है सिमटना पड़ा, लेकिन अब जो ईशान किशन ने डिसीजन लिया था कि फॉलो ऑन नहीं देंगे, उसके पीछे सिर्फ एक ही जो मंशा उनकी नजर आ रही थी कि मुकाबले को ड्रॉ की तरफ ढकेला जाए ताकि ये जो खिताब है बिल्कुल दूर ना जा सके ईस्ट जोन से।
2: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि दोनों जो पहलू हैं सिक्के के, हेड्स और टेल, दोनों ही ईस्ट जोन की तरफ आते हुए नजर आते हुए मुकाबला ड्रॉ होता है तब भी पहली पारी के आधार पर टीम जीतेगी, और अगर जीत दर्ज करती है तो स्वाभाविक है कि एक शानदार और ऐतिहासिक जीत इस टीम के रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी। अब अंत में बात की जाए यूएस ओपन, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां बेन शेल्टन ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ साथ महिला वर्ग में अरीना सबालेंका और जेसिका पेगुला भी अंतिम चार में पहुंच गई हैं। विशेष टेनिस के कोर्ट से क्या खास अपडेट है आपके पास?
3: शक्ति, शेल्टन ने ये जो जीत अल्कराज पे जीत दर्ज करी है वो बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 18 मुकाबलों की विनिंग स्ट्रीक थी अल्कराज के पास ग्रैंड स्लैम में, वो उसको तोड़ा है, और इससे पहले 17 मुकाबले शेल्टन जो है वो टॉप 3 के जो खिलाड़ी थे उनसे हार चुके थे, अल्कराज से भी 3 मुकाबले हार चुके थे। तो ये जीत उनके लिए खुद में एक बहुत बड़ी जीत है और एक बार वो फिर से अपने तीसरे सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे। अल्कराज जो अपना गेम बहुत देर तक लेके जाते हैं, आखिरी तक मुकाबले को खींचते हैं, ये उन पर ही भारी पड़ता आज नजर आया, और शेल्टन ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अंतिम सेट में जीत लिया।
2: जी बिल्कुल, हम श्रोताओं को बता दें कि 4 घंटे 28 मिनट तक चला ये मुकाबला, अमरीकी ओपन के इतिहास का सबसे लंबा खेला गया मैच है, और अब शेल्टन का मुकाबला अमेरिका के ही फ्रांसिस टियाफो से होगा, यानी एक चीज इस तस्वीर में साफ है कि फाइनल में कम से कम एक अमेरिकी खिलाड़ी जरूर कोर्ट पर उतरेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने

0: सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। कहा, ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
1: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम

0: नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used.